0: गुड मॉर्निंग सुपर सुप्रभात छत्रपति संभाजी नगर। आज है बुधवार की सुबह और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, आपकी मॉर्निंग गुड करने के लिए आपके साथ इस खूबसूरत दिन की शुरुआत करने आया हूँ। दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के एक सुविचार के साथ आज के अपने दिन को। गांधी जी कहते हैं कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। वाह, कितना गहरा और सच्चा संदेश है ना। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि यार समाज ऐसा है, लोग वैसे हैं, हालात बेहतर क्यों नहीं होते, लेकिन गांधी जी कहते हैं अगर बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आज आसपास पॉजिटिविटी हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच पॉजिटिव करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें तो शुरुआत खुद अपने ईमानदार होने से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस बुधवार की सुबह आइए ठान लेते हैं कि जो भी छोटा सा बदलाव हम कर सकते हैं वो करेंगे, चाहे किसी को मुस्कान देना हो, मदद करनी हो या फिर सिर्फ अपने काम को बेहतर करना हो। यकीन मानिए यही छोटे कदम बड़ा बदलाव बनाते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत विचार के साथ आज की सुबह को और खूबसूरत बनाते हैं और अपने वाली बनाते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, आप सुनते हैं शानदार गाने, आपके दिन की शुरुआत को मनाएंगे एनर्जेटिक और पॉजिटिव विद आरजे अदनान इन द शो।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरजे अदनान आपके साथ है। नवरात्रि का तीसरा दिन और हमारी ये खास सीरीज भारत रत्न नारी शक्ति में आज हम बात करने जा रहे उस आवाज की जिसने सिर्फ गाने नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में जगह बना ली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की सौर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में। आरजे अदनान आपके साथ है। दोस्तों, 1929 में इंदौर में जन्मी लता दीदी का बचपन बहुत संघर्षों से गुजरा। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर खुद गायक और रंगमंच कलाकार थे, लेकिन जब लता दीदी छोटी ही थी तभी पिता का साया सर से उठ गया। घर की जिम्मेदारी और छोटे भाई बहनों का सहारा बनने के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र में गाना शुरू किया। सोचिए, महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया और फिर धीरे धीरे वो आवाज बन गई जो कि हर घर की धड़कन थी। चाहे वो ए मेरे वतन के लोगों जैसा देशभक्ति गीत हो या फिर लग जा गले जैसा रोमांटिक नगमा, लता दीदी ने हर जॉनर में वो जादू कर दिया जो शायद ही कोई और कर पाएगा। कहते हैं कि उनका गाना सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुंचता था। शायद यही वजह है कि उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। 1999 में जब उन्हें भारत रत्न मिला तो ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था बल्कि हर उस इंसान की मोहब्बत और दुआ थी जो उनकी आवाज से जुड़ा हुआ था। आज जब हम लता दीदी को याद करते हैं तो लगता है जैसे उनकी आवाज अमर है। उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि संगीत सिर्फ सुरों का मेला नहीं है बल्कि एक दुआ, एक एहसास, एक रिश्ता होता है। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि के इस खास दिन पर लता दीदी की यादों को सलाम करते हैं और उनकी आवाज में वही जादू एक बार फिर महसूस करते हैं और उनके कुछ बेहतरीन से नगमे अभी एंजॉय करते हैं। सो ऐसे हम भारत रत्न लेडीज के बारे में जानेंगे इस नवरात्रि में। सो बने रहिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो ऑन एमजीएम 90.4।

0: डीजे अदनान आपके साथ है और गिफ्ट जीतने का मौका भी लेकर आया है।
1: All is well. आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन MGM 90.8 FM। So, गिफ्ट आप कैसे जीतोगे? बस मेरे एक छोटे से पहेली का जवाब देकर। देखो यार, पहेली मैं बहुत मुश्किल तो नहीं पूछता हूँ, बहुत आसान सी होती है, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। So, आज की पहेली कुछ ऐसी है कि वो कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है? बताइए बताइए, वो कौन है जो कि नीम और करेले से भी कड़वा होता है? जवाब व्हाट्सएप कीजिए 9359320080।

व्हाट्सएप नंबर पर। और ये एक ऐसी बात है जो कि सच में बहुत कड़वी होती है लेकिन असरदार होती है। बताइए बताइए, नंबर फिर से एक बार दोहराता हूँ, 9359320080। जो सबसे पहले जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलेगा। सो जल्दी करे, देर मत करे और सुनते रहे।

0: லைஃப் மந்திரா வித் ஆர்ஜே அதனான் இன் த ஷோ.
1: ஆல் இஸ் வெல் ஆர்ஜே அதனான் இன் த மார்னிங் ஷோ. ஃப்ரெஷ்னஸ் லைவ் ரேடியோ கம் ஃப்ரோ
0: ஆன் எம்ஜிஎம் 90.8 எஃப்எம். और लाइफ मंत्रा में हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं किसी से मिलते वक्त ना तो कैसे स्माइल करके बात करनी चाहिए और ये कितना जरूरी है। स्माइल करते ही आप खुद को और सामने वाले को पॉजिटिव एनर्जी देते हो, मूड इंस्टेंटली हल्का और खुशनुमा हो जाता है। चाहे इंटरव्यू हो, नए दोस्त हो या प्रोफेशनल मीटिंग, स्माइल से आपका इंप्रेशन फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगता है। देन इसके बाद रिसर्च कहता है कि स्माइल करने से बॉडी में एंडोरफाइंस रिलीज होते हैं और जो स्ट्रेस और एंजाइटी कम करते हैं।

रेगुलर स्माइल से लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है। स्माइल से ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मतलब खुश रहने से हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। तो आज का लाइफ मंत्र यानी कि सिंपल है, हर मिलन में एक स्माइल दो, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। यही तो है आज का लाइफ मंत्र। सो याद रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा। All is well. Nanaka morning show. Freshness light radio ka flow. On MGM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: फरमाइश कुछ भी हो वो पूरा करना मेरा अधिकार है, मेरा काम है। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और इस वक्त ना तो मैं आपकी फरमाइशें पूरी करता हूँ। सो आज की फरमाइश आई है धर्मेंद्र कुमार जी की तरफ से। क्या बात है, धर्मेंद्र जी की फरमाइश है और गाना है
2: भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार।
0: भौरे ने खिलाया फूल, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाने की फरमाइश की है। तो अब धर्मेंद्र कुमार जी की फरमाइश पर ये गाना अभी हम प्ले करेंगे। और आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ करोगे व्हाट्सएप? 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। फिर से नंबर दोहराता हूँ, 9359320080। नंबर नोट करके रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। और बाकी तो सुनते रहिएगा।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: लेट्स टॉक अबाउट सिटी अपडेट। सिटी में चल क्या रहा है? फिलहाल सिटी में चल रही है अक्टूबर हीट, और अक्टूबर हीट के झटके बहुत जोरों से बैठ रहे हैं जनाब। हालांकि देखा जाए तो हर साल ना तो अक्टूबर हीट होती है, तो और अक्टूबर हीट में टेम्परेचर अपने शहर का होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का। बट इस साल कुछ माहौल ही पूरा चेंज हो चुका है, एंड और एल नीनो की वजह से ना तो सारे मौसम में बदलाव आ गया है। बरसात तो ना के बराबर गिर गई, और अक्टूबर हीट में फिलहाल अपने शहर का टेम्परेचर 35 से 36 या 37 डिग्री तक पहुंच रहा है। मतलब एक वीक में तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया अक्टूबर हीट में। हालांकि ये ऐसा कभी होता नहीं है, बट इस साल ये बहुत अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वरना अक्टूबर हीट तो हम हर साल झेलते हैं, बट इस साल के अक्टूबर हीट ये एकदम फील हो रही है मार्च या अप्रैल महीने की हीट जैसी। थोड़ा बच के रहिएगा, और अक्सर दोपहर में ना तो ये हीट के झटके ज़्यादा बैठते हैं, तो ख्याल रखिएगा। बाकी रात के वक्त ना तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है, और दिन में दोपहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस वजह से ऐसे बदलते मौसम के साथ आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, बदल सकती है, तो खुद का ख्याल भी रखिएगा। अक्टूबर हीट जितने झटके देती है उससे ज्यादा बीमार भी कर सकती है आपको, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी अक्टूबर हीट के झटके हमें महसूस करना पड़ेगा इस मंथ एंड तक। तो बी केयरफुल एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

लॉर्ड, अपने शहर में आजकल एक नई बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और बीमारी का नाम है डॉन बनने का शौक, हैशटैग छोटा डॉन। कुछ लड़कों को लगता है कि सड़क पर चार दोस्तों को लेकर घूमने से, मार्केट में बिना मतलब का रौब दिखाने से और लोगों को धमकाने से मैं डॉन बन जाऊंगा। अरे भाई, डॉन बनना है तो मोहल्ले का ट्रैफिक जाम तो अपने आप ही अपने एरिया में अच्छी इज्जत वगैरह कमाएगा, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि शहर में ऐसे सो कॉल्ड छोटा डॉन, खुद को डॉन बोलने वाले प्रजाति ना तो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड किसी दुकानदार को, किसी बिजनेस वाले को, राह चलते लोगों को फजूल में धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ऐसे चीजें अपने शहर में तो आजकल बहुत बढ़ रही है और इनकी हवाबाजी देखो तो मार्केट में ऐसे चलते हैं, पूरा मार्केट इन्होंने खरीदा है, जेब में 10 रुपए नहीं होते और खुद को डॉन कहते हैं। क्या भाई, इसको चिंदी चोर कहते हैं, पता है क्या? अरे भाई, सामने वाला इंसान तुम्हें देखकर रास्ता दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे डर रहा है, ये याद रखिएगा। हो सकता है उसे तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह लगना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास काम है और आप लोगों के पास काम नहीं है। और एक बात बताओ, घर वाले सोचते हो कि हमारा बेटा बड़ा होकर नाम कमाएगा, लेकिन साहब को तो शहर का छोटा डॉन बनना है। भाई, नाम कमाना है तो ऐसा काम करो कि अपने आप तुम मिसाल बन जाओ, ना कि तुम्हें देखकर लोग रास्ता बदले और तुम सीधे हवालात की हवा खा लो, क्योंकि असली पहचान धमकी देने से नहीं अपने काम से बनती है। और जाते जाते बस इतना ही कि शहर में डॉन बनने का शौक छोड़ो भाई, अपनी असली जिंदगी के हीरो बनो, वरना डॉन बनने की कोशिश में कब आपको हवालात की हवा खानी पड़ेगी और सपना आपका चूर चूर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नजर पुलिस वालों की आप पर है ही।

0: याद रखिएगा। बाकी तो प्रशासन ऐसे खुद को डॉन समझने वालों के ऊपर कब कार्रवाई करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। Stay tuned.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. हैप्पी नवरात्रि. तो बात कुछ ऐसी है कि नवरात्रि में तो अब हर कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है. सब तरफ खुशियां ही खुशियां है. माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कन्या पूजा करते हैं और सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगाते हैं, जय माता दी. लेकिन जरा एक सवाल है आपसे कि इसी माँ के नाम की गाली हम अक्सर देते हैं. हर एक सेकेंड पर, हर एक बात पर हमारे मुँह से गाली निकलती है. वो अरे इंसान क्या गजब का कैरेक्टर है ना तेरा. मतलब नवरात्रि में पूजा करते हो माँ की और बाकी दिन में कहते हो तेरी, समझे. तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें बदलनी चाहिए. जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ की ममता की हम मिसालें देते हैं, उसी माँ के नाम को हम गालियों में यूज करते हैं. और सबसे कमाल की बात ये है कि गाली देने वाले बिना तो किसी माँ के बेटे ही है और गाली सुनने वाले भी. फिर भी दोनों को लगता है कि माँ को बीच में लाना बहुत नॉर्मल बात है. अभी आप देखो ना, गाड़ी चला रहे हो और सामने से कोई गुजर गया तो आपके मुँह से क्या निकलेगा, तेरी. तो समझेगा कि हैशटैग हर गाली में हर को क्यों लाना, समझे. स्टे ट्यून्ड.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: 90.8 FM.
1: अजय देवगन की दृश्यम 3 द कंक्लूजन बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा ही रही है। फिलहाल इसने ना तो 500 करोड़ तक की कमाई कंफर्म कर दी है बॉक्स ऑफिस पर। अब देखा ये जाएगा कि विजय सालगांवकर की ये मिस्ट्री ऑडियंस को कितने दिन तक और थिएटर में खींच सकती है। एंड होने वाला इस कहानी का होने वाला क्या हो ही गया, बट बढ़िया तो है यार फिल्म। और इसी के साथ किंग खान के फैंस के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का फाइनल शूटिंग शेड्यूल मुंबई में शुरू होने ही वाला है ऐसा कहा जा रहा है, और फिल्म में सुहाना खान भी नजर आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का टीजर शाहरुख खान के बर्थडे के दिन रिलीज किया जा सकता है। इसका टीजर यानी फैंस के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ फिल्म सरप्राइज भी होने ही वाला है। और रणवीर कपूर की साई पल्लवी और यश की जो रामायण फिल्म है ना, 5 नवंबर 2026 को पूरे दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। और खास बात यह है कि फिल्म करीब 40 लैंग्वेज में रिलीज करने की तैयारियां हो रही है, यानी कि 40 लैंग्वेजेस में फिल्म डब होने वाली है। और इसके एडवांस बुकिंग दशहरे से शुरू हो सकती है ऐसा भी कहा जा रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल्मी अपडेट है, याद रखिएगा। बाकी तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ सुनते रहिएगा आरजे अदनान का शो।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422650।

सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया तो हो गए अभी आप?
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे? जानते हो, सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, RJ अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी RJ अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, RJ अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। RJ_ADNAN इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10

0: पहले वाला गेम हम अपने शो में खेलते हैं सुबह सुबह आरजे अदनान आपके साथ इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमटीएम 90.8 एफएम। और आज मॉर्निंग में ना तो मैंने आपको एक पहेली पूछी थी, गेम का नाम आपको पता है क्या है?
2: कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी।
0: जी हाँ, सो आज की पहेली कुछ ऐसी थी कि वो कौन है जो नीम और करेले से भी कड़वा होता है, और इसका जवाब है सच। जी हाँ, सच सच ट्रू जो होता है ना, सच्चाई जो होती है, कहते हैं कि वो नीम और करेले से भी कड़वी होती है। तो यही है इस पहेली का जवाब था सच, और एकदम करेक्ट और सच्चा जवाब दिया है कोमल काले ने। सो कांग्रेचुलेशन कोमल काले जी, आज आप विनर बन चुकी हो, आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो कोमल जी के लिए जोरदार तालियां तो होनी ही चाहिए यार, क्या बात है कोमल जी, आज आप विनर बन चुकी हो। बाकी दोस्तों आप भी ना तो ऐसे विनर बन सकते हो, बस मेरे पहेलियों के जवाब देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गिफ्ट जीतते रहिए और सुनते रहिए।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: को अफेक्ट कर रही है तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422

0: लेट्स टॉक अबाउट सिटी अपडेट। सिटी में चल क्या रहा है? फिलहाल सिटी में चल रही है अक्टूबर हीट, और अक्टूबर हीट के झटके बहुत जोरों से बैठ रहे हैं जनाब। हालांकि देखा जाए तो हर साल ना तो अक्टूबर हीट होती है, तो और अक्टूबर हीट में टेम्परेचर अपने शहर का होता है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का। बट इस साल कुछ माहौल ही पूरा चेंज हो चुका है, एंड और एल नीनो की वजह से ना तो सारे मौसम में बदलाव आ गया है। बरसात तो ना के बराबर गिर गई, और अक्टूबर हीट में फिलहाल अपने शहर का टेम्परेचर 35 से 36 या 37 डिग्री तक पहुंच रहा है। मतलब एक वीक में तकरीबन 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया अक्टूबर हीट में। हालांकि ये ऐसा कभी होता नहीं है, बट इस साल ये बहुत अलग सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वरना अक्टूबर हीट तो हम हर साल झेलते हैं, बट इस साल के अक्टूबर हीट ये एकदम फील हो रही है मार्च या अप्रैल महीने की हीट जैसी। थोड़ा बच के रहिएगा, और अक्सर दोपहर में ना तो ये हीट के झटके ज़्यादा बैठते हैं, तो ख्याल रखिएगा। बाकी रात के वक्त ना तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है, और दिन में दोपहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस वजह से ऐसे बदलते मौसम के साथ आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, बदल सकती है, तो खुद का ख्याल भी रखिएगा। अक्टूबर हीट जितने झटके देती है उससे ज्यादा बीमार भी कर सकती है आपको, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में और भी अक्टूबर हीट के झटके हमें महसूस करना पड़ेगा इस मंथ एंड तक। तो बी केयरफुल एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: इसलिए कि नवरात्रि में तो अब हर कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहा है, सब तरफ खुशियां ही खुशियां है। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कन्या पूजा करते हैं और सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगाते हैं, जय माता दी। लेकिन जरा एक सवाल है आपसे कि इसी माँ के नाम की गाली हम अक्सर देते हैं, हर एक सेकेंड पर, हर एक बात पर हमारे मुँह से गाली निकलती है। वाह रे इंसान, क्या गजब का कैरेक्टर है ना तेरा। मतलब नवरात्रि में पूजा करते हो माँ की और बाकी दिन में कहते हो तेरी, समझे? तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें बदलनी चाहिए। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ की ममता की हम मिसालें देते हैं, उसी माँ के नाम को हम गालियों में यूज करते हैं। और सबसे कमाल की बात ये है कि गाली देने वाले बिना तो किसी माँ के बेटे ही है और गाली सुनने वाले भी। फिर भी दोनों को लगता है कि माँ को बीच में लाना बहुत नॉर्मल बात है। अभी आप देखो ना, गाड़ी चला रहे हो और सामने से कोई गुजर गया तो आपके मुँह से क्या निकलेगा, तेरी। तो समझेगा कि हैशटैग हर गाली में हर को क्यों लाना, समझे? स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

नो व्हाट, अपने शहर में आजकल एक नई बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और बीमारी का नाम है डॉन बनने का शौक, हैशटैग छोटा डॉन। कुछ लड़कों को लगता है कि सड़क पर चार दोस्तों को लेकर घूमने से, मार्केट में बिना मतलब का रौब दिखाने से और लोगों को धमकाने से मैं डॉन बन जाऊंगा। अरे भाई, डॉन बनना है तो मोहल्ले का ट्रैफिक जाम तो अपने आप ही अपने एरिया में अच्छी इज्जत वगैरह कमाएगा, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि शहर में ऐसे सो कॉल्ड छोटा डॉन, खुद को डॉन बोलने वाले प्रजा दिना तो बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड किसी दुकानदार को, किसी बिजनेस वाले को, राह चलते लोगों को फजूल में धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ऐसे चीजें अपने शहर में तो आजकल बहुत बढ़ रही है और इनकी हवाबाजी देखो तो मार्केट में ऐसे चलते हैं, पूरा मार्केट इन्होंने खरीदा है, जेब में 10 रुपए नहीं होते और खुद को डॉन कहते हैं। क्या भाई, इसको चिंदी चोर कहते पता है क्या? अरे भाई, सामने वाला इंसान तुम्हें देखकर रास्ता दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे डर रहा है, ये याद रखिएगा। हो सकता है उसे तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह लगना ही नहीं है, क्योंकि उसके पास काम है और आप लोगों के पास काम नहीं है। और एक बात बताओ, घर वाले सोचते होंगे हमारा बेटा बड़ा होकर नाम कमाएगा, लेकिन साहब को तो शहर का छोटा डॉन बनना है। भाई, नाम कमाना है तो ऐसा काम करो कि अपने आप तुम मिसाल बन जाओ, ना कि तुम्हें देखकर लोग रास्ता बदले और तुम सीधे हवालात की हवा खा लो, क्योंकि असली पहचान धमकी देने से नहीं अपने काम से बनती है। और जाते जाते बस इतना ही कि शहर में डॉन बनने का शौक छोड़ो भाई, अपनी असली जिंदगी के हीरो बनो, वरना डॉन बनने की कोशिश में कब आपको हवालात की हवा खानी पड़ेगी और सपना आपका चूर चूर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नजर पुलिस वालों की आप पर है ही, तो याद रखिएगा। बाकी तो प्रशासन ऐसे खुद को डॉन समझने वालों के ऊपर कब कार्रवाई करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। Stay tuned.

0: Adnan. Only on MGM 90.8 FM.
1: अजय देवगन की दृश्यम 3 द कंक्लूजन बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा ही रही है। फिलहाल इसने ना तो 500 करोड़ तक की कमाई कंफर्म कर दी है बॉक्स ऑफिस पर। अब देखा ये जाएगा कि विजय सालगांवकर की ये मिस्ट्री ऑडियंस को कितने दिन तक और थिएटर में खींच सकती है। एंड होने वाला इस कहानी का होने वाला क्या हो ही गया, बट बढ़िया तो है यार फिल्म। और इसी के साथ किंग खान के फैंस के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग का फाइनल शूटिंग शेड्यूल मुंबई में शुरू होने ही वाला है ऐसा कहा जा रहा है, और फिल्म में सुहाना खान भी नजर आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का टीजर शाहरुख खान के बर्थडे के दिन रिलीज किया जा सकता है। इसका टीजर यानी फैंस के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ फिल्म सरप्राइज भी होने ही वाला है। और रणवीर कपूर की साई पल्लवी और यश की जो रामायण फिल्म है ना, 5 नवंबर 2026 को पूरे दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। और खास बात यह है कि फिल्म करीब 40 लैंग्वेज में रिलीज करने की तैयारियां हो रही है, यानी कि 40 लैंग्वेजेस में फिल्म डब होने वाली है। और इसके एडवांस बुकिंग दशहरे से शुरू हो सकती है ऐसा भी कहा जा रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिल्मी अपडेट है, याद रखिएगा। बाकी तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ सुनते रहिएगा आरजे अदनान का शो।
0: Only on MGM 90.8 FM.

0: क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया तो होगी अभी आप।
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, आरजे अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी आरजे अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूं ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर डीएम में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, आरजे अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। आरजे अंडरस्कोर ADNAN, इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: शनिवार सुबह 7 से 11 ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: गौरी मांडवा खाली।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

0: शायद तू क्या गा रही?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?